Hello, Air India. Air India. What? There is a time bomb in flight number 125. Hello, who is speaking? कहाँ से बोल रहे हैं आप? कौन बोल रहे हैं? Hello. Hello. जवाब. किसी ने फोन तो बनाया कि flight number 125 में time bomb लग गया. What?

0: लेकिन आप हैवंट यू ऑलरेडी चेक्ड इन?
1: नहीं, मैं तो अभी नहीं। ये देखिए मेरा टिकट।
0: स्ट्रेंज, बट आई एम सॉरी, 125 हैज टेकन ऑफ।

0: Hello, Air India.
1: Air India.
0: What? There is a time bomb in flight number 125. Hello, who is speaking? कहाँ से बोल रहे हैं आप? कौन बोल रहे हैं? Hello, hello. क्या बात? किसी ने फोन से बताया कि flight number 125 में time bomb लग गया. What?
2: Your attention, please. We are sorry to inform.